कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो रे दिसिध करमो सब होई दुष्ट शाह शुव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दार जे दुष्ट दोख ते रहा खड़ के तुम्हें सरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्ब ठौर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांचत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो आहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापत मस्त सुभ मस्त अफजून दोहरा दास जान कर दास पार कीजै कृपा अपार आप हाथ दे राख मुहे मन कराम बचन विचार चाओ पई मैं न गणे सहे प्रथम नाऊ किसन बिसन कब हूं नह त्याऊ कान सुने पहचान न तन सो बलिब लागी मोरी पाग इनसो महाकाल रखवार हमारो महालोह मैं किंकर थार अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतपरिय चुन चुन सतर हमारे मरिय देग तेग जग मैं दो चल राख आप मुहे और नंद लै तुम माम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तुहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथमा तरो

दोहरा। जो निज प्रभ मोह सो कहा, सो कहे हाँ जग माहे, जो ते प्रभ को त्याहे हैं, अंत सुर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछ नाहे, जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा। जब आयस प्रभ को पयो, जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूं कहत सुनाए, कब बाच दोहरा। ठाड़ पयो मैं जोर कर, बदन कहा सिर न्याए, पंथ चले तब जगत मैं, जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नेत उठते हैं संतायंत, लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरुष की देह मो कोटक बिशन महेश, कोड इंद्र ब्रह्मा के तेरा वसास क्रोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुरगवास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चाओ पाई। जो है कथा सुने अरगावे, दुख पाप तेह निकट न आवे, बिशन भगत की ए फल होई, आद ब्याद सुवे सके न कोई। सम्मत सत्रह सहज पचावन, हाल बदी प्रथम सुख दावन, तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, भूल परी लहो लेह सुधारा दोहरा। नेत्र तोंके चरण तार, सद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण की और अकबर कथा प्रसांग दोहरा। साद असाद जानो नहीं, बाद सुबाद बेबाद, ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

ना मानियो। सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री स्पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहियो सब तो हे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै

गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चावर शतर तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अपार कृपा मेहर अहमत दा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे ने सजे दीवाना अंदर नेता प्रताप संतां रबी बाणी धुर की बाणी अकाली बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन शब्द नूं सुन के लाहा प्राप्त कर रहे हो। समा होया है गुरु के शब्द दी विचार गुरु के शब्द दे पाठ बोध दा। आओ साध संगत जी स्वासां नूं सफलियां करन हित मन चित बिरती नूं एकागर करदे होए पावन बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़िए। पिछे होण तक आपां 858 अंग तक सतगुरु जी दी पावन बाणी पढ़ी सुनी है। कल साध संगत जी बिलावल राग दी संपूर्णताई होई है। अज गोंड राग प्रारंभ हो रहा है। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जिया दी पावन पवित्र बाणी महामंत्र तों उपरंत प्रारंभ हो रही है। राग गौड चौपदे महला चौथा घर पहला जे मन चित आस रख है हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। इथों पावन बाणी प्रारंभ हो रही है। श्रद्धा सहित मन चित बिरती नूं एकाग्र करके सुनिए जी।

भगतो करता बूझत करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण करता गुर प्रसाद नानक सम दृष्टा।

0: गर्भ घोर मह राखनहारा तिस ठाकुर कौ सज नमस गर्भ घोर मह राखनहार तिस ठाकुर कौ सदा नमस्कार ऐसो प्रभ मन माहि त्याय घट अवघट जात कटह सहाय।
1: जात पाठ भी पोला कतह पाठ भी पोला ते सहाय भी जात कतह सहाय जिवे उचारण किया गया। हां जी
0: रहाओ रंकराओ जाके एक समान कीट हस्त सगल पूरान बियो पूछना मसलत तरह।

राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लेवलाय, राम राम जप निर्मल भय, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म

0: पंजव अचरज कथा महा अनूप प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला ना इस दुख नहीं जम जाला ना एहो बिनसै ना एहो जाए आद युगादि रहया समाए।
1: बहुत गंभीर डूंगा बचन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी साध संगत जी इस शब्द दे विच कर रहे हन। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप साध संगत जी कई

काल गगन है, चहु दिस गगन रहाए ले। आनद मूल सदा पुरखोत्तम, घट बिन सह गगन न जाए ले। मोहे बैराग पयो, एओ जियो आए, कहा गयो रहाओ। पंच तत्

0: कोट कोट मान कसवट्टी लावे सो कूटन मुगत बहु पावे।
1: कसवट्टी वावे ते अदक दा जोर ला के जिवे कसवट्टी उचारण कीता। कोट कोट मान कसवट्टी लावे सो कूटन मुगत बहु पावे।

नौ नायक की भगत पछाने सो बाजारी हम गुर माने तस्कर सो जे तात ना करे इंद्री कै जतन नाम उच्चर कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरुदेव अत रूप विचखन गोंड धन गुरुदेव धन गोपाल धन गुरुदेव धन अनाद पूखे कवल टहकेव धन।

मन भी खोज कर करके मैं इतने पहुंचिया, मन जैसा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा? क्यों एहो मन शक्ति, एहो मन सी हो, एहो मन पंच तत्व को जी। मन मन जाए ते मन ही भगवान हो जाता है, मन ना मने ते मन ही शैतान हो जाता है। फिर सारी मन को मनाते हैं। मैं फिर दोहरावा, अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है मन नहीं मनता, सुनिया तो है मन नहीं मनता, वेखिया तो है मन नहीं, मन नहीं मनता तो फिर नहीं है, नहीं। मन जिसनों मन लेंदा है ते मन जिसनों प्रभावित हो जाता है, मन उसे दी मांग करता है। बड़े ध्यान ना सुनना, मन जिस दी मांग करता है, मन बार बार उसे नो याद करता है। मन जिसनों याद करता है, फिर मन उसे लिए समा करता है, वक्त करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। इसनों उल्टा के मैं दोहरावा, जिसनों मन मनदा नहीं ते जिसनों जिस तो मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता, उसकी प्राप्ति लिए फिर मनुख को ना समा है, ना संघर्ष है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सारी जिंदगी भी मनुख परिवार को निछावर कर सकता है, निरंकार वास्ते जिंदगी का दसवा भाग भी कोई नहीं। 24 घंटे एक पैर ते भी धन वास्ते खड़ा हो सकता है, धर्म वास्ते ते अमृत वेले का एक घंटा भी कोई नहीं। की होया झूम झूम के कीर्तन सुन ले। मन जिस तो प्रभावित नहीं, मन जिसनों मनदा नहीं, मन उसकी मंग भी नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता, उन्हों हासिल कर ले ना समय ना संघर्ष है, लोड़ी नहीं, गल खत्म। कबीर ते किसी ने जरूर ऐसा प्रश्न किया है, उसी परमात्मा नु किवें जाने है, इन्ना महान परमात्मा और थोड़े को इतना महान ज्ञान, तुसी उस परमात्मा नु किवें जाने, केड़ी साधना की थी। कबीर कहने ने कहो कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर, साडा मन हरी नु हरी करके मन गया। जैसे मन पुत्र नु पुत्र करके मन लेंदा है, मित्र नु मित्र करके मन लेंदा है, पत्नी नु पत्नी करके मन लेंदा है, पति नु पति करके मन लेंदा है, मां नु मां करके मन लेंदा है, पिता नु पिता करके मन लेंदा है। जिन्हों मन लेंदा है फिर उसकी याद भी चलती, उन्हों मंगता भी, और पुत्र नु याद करने लिए वाजा बजाने की लोड़ है, मित्र नु याद करने वास्ते तबला खड़काने की लोड़ है, पति नु याद करने वास्ते पत्नी नु याद करने वास्ते क्या कथा कहानियां की लोड़ है, फिलसफा घोटन की लोड़ है। ये तो याद आपे ही आती, पुत्र की याद आपे आती, मित्र की याद आपे आती, भरा की याद आपे आती, पति की याद आपे आती है, पत्नी की याद आपे आती है। रह गई गल परमात्मा नु याद करना, इनू याद करना हो तबले बजाओ, वाजे खड़काओ, तबले खड़काओ, छैने खड़काओ, गला फाड़ फाड़ के सुर दिश करके अलाप करो, दिमाग दिया नसा नु ढिला करके फिलसफा घोटो, कथा कहानियां करो, सेवा करो, पुन करो, दान करो, अमृत वेले उठो। मैं दावे नाल कहना सब कुछ कर दिया भी उदी याद नहीं आती, नहीं आती। जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता, मन उसनु याद नहीं करता, उदे लई कोई समा नहीं, उदे लई कोई वक्त। कबीर कहने मैं साधना पिया करदा कि मन नु मनाण दी, मन परमात्मा नु परमात्मा करके मन लवे, मन लवे, दिन रात यतन पिया करदा। पर मैं अवधि ज्ञात लई अर्ज करा, एक हकीकत है,

ये तंदुरुस्त नहीं है। जिते तक इसका मन स्वस्थ नहीं होया, ते पता है स्वस्थ दे अखरी अर्थ की ने, संस्कृत का शब्द है, इहदे अर्थ ते सेहत कर लेंदे ने, तंदुरुस्ती कर लेंदे ने, लेकिन संस्कृत का यह स्वस्थ शब्द बड़ी अपने विच गहराई रखता है। स्वय स्थिति ही अपने विच टिक गया है, हुण मन अपने विच आनंदित हो गया, टिक गया, ते परमात्मा दी अंश है, भाव परमात्मा टिक गया, अपने घर टिक गया, उन्हों कहिंदे ने स्वस्थ। जो स्वय स्थित हो गया, स्वयं विच स्थित हो गया, वो फिर हो सकता है शायद तन दे तल ते भी नवा नरोवा हो गए। जिन्हां नूं तुसीं तन दे तल ते तंदुरुस्त देखदे हो, नहीं ने, दिखाई दे रहे ने, रोग अजे जरा सीमा च है, ये भी महसूस कर दे, अजे जरा सीमा तो अगे नहीं गया। अनेकां प्रकार दे रोगां नाल देहुरी भरी हुई है, लेकिन इहदियां जड़ां सूक्ष्म शरीर दे च ने, मन दे च ने। अस्थूल शरीर दे चों रोग निकलन, आयुर्वेद आचारिया अगे आए, होम्योपैथी आई, यूनानी इलाज आया, एलोपैथी है, और बड़े यतन ने, लेकिन गुस्ताखी माफ, मनुख दा मन किवें स्वस्थ होवे, स्वय स्थित अपने विच टिके, इहदे कोई मनुख उद्यम भी नहीं करदा, यतन भी नहीं करदा, समा भी नहीं कढ़दा, इहदी लोड़ भी नहीं समझदा। तो हुंदा की पिया, रोज रोज मनुख दा मनमई कोश, विज्ञानमई कोश रोगी हुंदा जा रहा है। इन्हों विज्ञानमई कोश क्यों कह, इहदे च शक्तियां बड़िया ने, इहदे च बड़ा कुछ है, बशर्ते इस नूं सुचेत करिए। तन दी संगत करदिआं करदिआं, चूंकि तन जड़ है, तो सूक्ष्म शरीर भी अचेत हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दा असर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ दी संगत करदिआं करदिआं सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौ गया। तो मैं कई दफा अर्ज कीती है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप, वाहेगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं, इस सुत्ती हुई चेतना नूं जगाउण वास्ते, इस सुत्ते हुए मन नूं जगाउण वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा जपी जा, उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते, महाराज कहिंदे ने, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे, साबत वस्तु ओ अपनी लवे। साबत वस्तु की परमात्मा, परम रस परम आनंद, ये किसनों प्राप्त होंदा है, जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे, मन दे नौ भाग सुते दे ने, तो उस एक भाग नू थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसी गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है जागदा, सोया इति सूक्ष्म शरीर दे तल ते सोया होया है, सुता होया है। जागत सोया जन्म गवाया, वाहेगुरु

0: संगत विच जा के इहदे धोन दी होर कोई थां है ही नहीं जी। सच है साध संगत इस मन नूं धो दिंदी है, कुछ संगत धोते कोई मन नूं फिर मैल नाल भर दिंदी है, इन्ना फर्क है। तां ही सतगुरु जी ने कहा महिमा साधु संग की सुनो हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पै चीता। महाराज कहिंदे इस मन नूं जे मांझना है ते साध सभा विच साध संगत विच जाके नूं धोणा कर,
1: हर कै नाम निवास।
0: जदों सत संगत विच इह मन धुप जाएगा इहदी मैल उतर जाएगी ते पार ब्रह्म परमेश्वर जी इस मन विच निवास करनगे, उहनां दा नाम वसेगा।
1: मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई।
0: जिन्हां खिरदियां दी मैल धुप जाए उन्हां दे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा अज्ञानता ए मिट जांदी ए खत्म हो जांदी है।
1: कमल होवै प्रगास।
0: उन्हां दा खिरदा कमल जड़ा ओ खिड़ जांदा है, ओ प्रगास मान हो जांदा है, उस अंदर रोशनी हुंदी है।
1: गुर बचनी सुख उपजै पाई।
0: हे भाई गुरु दे बचना नूं अपने खिरदे च वसाइए, एदे विचो आत्मक सुख पैदा हुंदा है।
1: सब फल सत गुर पास।
0: सारे फलां दा जिहड़ा दाता है ओ समरथ सत गुरु जी खान।
1: मेरा तेरा छोड़िया पाई।
0: सतगुरु गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने जे खिरदे विच प्रगास जन है जेड़ी आ मेर तेर तू लाई है, आ तेरा है आ मेरा है। प्यारियो ए मेर तेर दा संबंध कला दौलत नाल नहीं, घरां नाल नहीं, परिवारां नाल नहीं। जे उच्ची अवस्था विच जिन्हां नूं दाता बख्शदा है, जदों असीं इत्थे वी आउने आ तेरा धर्म मेरा धर्म मेरा फिरका तेरा फिरका, गुरु जी कहिंदे ने इन्हां ओ सारियां गल्लां तों उच्चा उठ। फरीदा मन मैदान कर टोए टिब्बे लाहे। आ जिहड़े तेरे अंदर टोए टिब्बे बने ने ना, सच्ची मुची ही चलदा पिया। टोए दा अर्थ हुंदा नीवा ते टिब्बे दा अर्थ उच्चा। बस सारी जिंदगी इहदे च निकल गई, किते मन टिब्बा बन के कहिंदा ए मेरे तों नीवा, ते किते खीनता विच आ के कहिंदा ए मेरे तों उच्चा। कहिंदे मन नूं पदरिया कर, इहनूं आ जिहड़ी मेर तेर तूं लाई बैठा इत्थे कुछ नहीं, ए मेर तेर नूं तूं त्याग दे ते फिर कर की।
1: होइया सब की तूर।
0: ए मेर तेर तां मिटेगी, तू सारिआं दे चरणां दी धूड़ बन जा, निम्रता विच आ जा। गुरमुखो फिर मेरी बेनती है, इस मेर तेर ने कदी किसे दा अंदर नहीं वसन दिता, क्योंकि जदो मेरा कहने आ उदो मोह पैदा हुंदा है, जदो कहने आ तेरा उदो द्वेष पैदा हो जांदी। इहदे कोल क्यों? महाराज कहिंदे सब दे चरणां दी धूड़ बन, इस मेर तेर नूं त्याग दे।
1: कट कट ब्रह्म पसारिया पाई।
0: हे भाई किस नूं बगाना कहना पिया, सारिया घटां विच सारिया खिरदियां विच ओ पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म आप ही वसदा है। सब गोबिंद कह सब गोबिंद कह, गोबिंद बिन नहीं कोई। पर ए समझ तां पैगी ना, भाई नंद लाल साहब कहिंदे असीं कह ता दिंदे पए, मैं भी कह दिता अर्थ कर दित्ते, मेरा तेरा छड दे, सारिआं दे चरणां दी धूड़ बन जा, सारिआं विच परमात्मा वसदा पिआ। भाई साहब कहिंदे दिल अगर दाना बबद अंदर कनार सी यार हस्त, चश्मगर बीना बबद हर तरफ दीदार हस्त। फिर सुनियो, दिल अगर दाना बबद अंदर कनार सी यार हस्त, जे तेरा दिल दाना है सियाणा है अंदरों सफाई होई है ते यारा ओ यार तेरे अंदर वसदा पिआ। जे तेरिया अखां विचों मैल निकल गई केड़े पासे वेना, रब ता हर पासे वसदा पिआ। दिल अगर दाना बवद अंदर कनार सी यार हस्त, चश्मगर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। फिर देखो मेर तेर तो ऊपर उठ गए, अज मैं कौड़ा सच है अज दुनिया च सिर्फ ए लग्या हुआ है मेरा धर्म खिमा कर दिया जे मेरी कौम जा लफज मेरा धड़ा असी सब तो वड्डे। ओ गुरमुखो जे यही कहिंदे रे मेरा धर्म असी धड़ा साडा सिद्धांत, जे वड्डे दी सिफत ही ना कीती ते सारी जिंदगी इस होमे विच तुरदे रहे। याद रखियो परमात्मा दी प्राप्ति फिर भी नहीं। मैं कौड़ा सच दां कि सारी दुनिया का विरतारा है जी।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट

गहने पौन पानी बैसंत चंद सुरजुतार सगली धरती मातन वर्तन सर जंजा नानक मूसे ज्ञान बिहूनी हाय गया जमकाल महला पेला वन चेले नचन गोरे पैर हलान फेरन सिर उडुडरावा चाटे पाए देखे लोक से कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाईए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीज सदाईए जे जरवाना पर हरे जरवेश करिंदी आईए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेबेग तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया।

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खाथ पढ़िए है जेते बर्स बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेके एक गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत ही सब पव्या ते तो लव्या

0: धुआ पूरा तपे का सतगिर धुआ हो कलजुगरा थगन का कूड़ा गैर धुआ हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा सच रहे।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पड़के थुक पड़े निदारी तगना प्यारी तगना हथी तगना जेवा तगना की बे तगाया पे बते।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड रहया पर भो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे।

हर जति जत तहर सब सब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सोध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार हिसार की धार पछैया तोर तदेश मलेंद।

सतरन को पालमो बद की आओ घट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कूंचरा सथूला सा पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट

जियो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह, श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

0: नानक उदरे प्रभ शरणाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने बेअंत बेअंत कृपा की है जीवां दे कल्याण दे वास्ते। सतगुरु जी निरंकारी दर्शन दीदार बख्शिश कर रहे हैं। तुर की बाणी दा नितनेम अरदास आसीस रूप विच हुक्मनामा साहब जीआं दी बख्शिश सतगुरु जीआं ने कीती है। साध संगत जीओ, कल नूं संगरांद दा दिहाड़ा है अते शहीद भाई तारू सिंह जीआं दा शहीदी दिहाड़ा भी कल नूं है। 28, 29, 30 जुलाई नूं 31 रागां दे आधार ते कीर्तन राग दरबार सजाया जाएगा। समा शाम दे 6 तो रात दे 9 बजे तक दा होया करेगा। 1 अगस्त दिन शनिवार नूं सवेरे 9 बजे नगर कीर्तन आरंभ होवेगा अपने गुरद्वारा साहब जी तो। 2 अगस्त दिन एतवार सवेरे 6 बजे अमृत संचार होवेगा। अमृत छक के गुरु महाराज जी दे धीआं पुत्र सजो। हुण सिमरन दे नाल आपां जुड़दे हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

महाराज जी अगे जड़ा बीज रूप मंत्र है मंगलाचरण है वह उच्चारण करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक तो भावन का भी परमात्मा एक है। ओंकार तो भावन का जड़ा सारियां दे विच प्रकाशमान है अपनी सता नूं जमा के बैठा होया है ते सतगुरु जी दी प्रसाद किरपा दे द्वारा इस जीव नूं

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद बेसुमार अथा अगंत अतोलय

ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਉਪਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਛੰਦ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਛੰਦ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮੰਨੇ ਨੇ, ਸਤਿਅਮ, ਸ਼ਿਵਮ, ਸੁੰਦਰਮ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਮ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸੱਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ। ਤੂੰ ਸੱਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਣ ਤੂੰ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਲਾਸ ਹੀ ਉਲਾਸ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਉ ਹੀ ਚਾਉ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦਾ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਪੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਅਨੇਕ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਣਿਤ ਦੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਸਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਕਿ ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਅਗਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਕਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ, ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख, जो विचार नु मत्था टेक दिए, विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दिए। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिदा, इहदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ। जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वह आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कई का मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखदा है। जिस दे अगो तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जा है। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है। ये पूरने ने धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ए भेट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ए अपने विचार भेट करता है, गुरु अपने विचार इस नूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां दे च लोभ है, गुरु दे विचारां दे संतोख है। मनुख दे विचारां दे च काम है, गुरु दे विचारां दे च राम है। मनुख दे विचारां दे च हंकार है, गुरु दे विचारां दे च निरंकार है। मनुख दे विचारां दे च क्रोध है, गुरु दे विचारां दे च दया है। मनुख दे विचार दे च मोह है, गुरु दे विचार दे च प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नू भेट करना की, अपने विचारां नू भेट करना। हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दां च व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारां दा मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहंदे ने, बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान। है कि तेनू हड्डियां दा माण है, तेनू मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना, तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। ते जैसे असी वक वक रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मां दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानूं मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वक वक दे दिता। किसे नूं गोरा, किसे नूं काला, किसे नूं सांवरा, किसे नूं लाल, किसे नूं जर्दी मायल, किसे नूं गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तू देखी जगत उपाया, परमात्मा दी पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंके उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगां विच नारायण है।
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े आया मांस और मांस देते लिपटी हुई मिंज और मिंज देते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन अहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार सोचनी चितवनी ते अहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित अहंग। मन बुद्ध चित अहंग, इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है ते किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जद सोचदा है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध ते जद मनुख किसे नू याद करदा है या याद विच बैठा है, चिंतन विच बैठा है, ओही मन बन गया चित्त। मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है अहंग। ए मेरे विचार ने, ए मैं सोच रहा, ए मैं याद कर रहा, ए अहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ए चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन बुद्ध चित अहंग, ए मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, अहंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हाँ, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जद हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा मान है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते मान। तन ते मान है, धन ते मान है, जोबन ते मान है, प्रभता ते मान है, परिवार ते मान है, कुल ते मान है, जात ते मान है। इत महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा मान करदा है, कोई प्रभता दा मान करदा है, कोई धन दा मान करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा मान, जोबन दा मान, प्रभता दा मान। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, मान तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा उन्हां कोल, किस्ते उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो ताण मांगो धन लखमी सुत दे। हे प्रभु, निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा। और जो निताणा है, निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, और मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं, कमजोर कहिंदे नूं उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किस दा? जोर हुण प्रभु दा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हुण तू मेरा तान है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं इस करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिआं जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच, मनुख दी सोचनी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं, सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं, यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागज मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना है, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना है, बहुत कुछ पढ़ लेना है, पर मथे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनो अपना मन पढ़न दी जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे च लीन है, मन नो समझण दी कोशिश पिया करदा है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतरमुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, ओही भुल विष्णु करदा है, ओही भुल शंकर करदा है, ओही भुल इंद्र करदा है, ओही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और ओह कह रहे जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा ओही कह रहे जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे।

अंदर भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहिल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है। इंद्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहिल्या तिस देख इंद्र लुभाया सहस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है, मनुख दी सोचनी विच की है, मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है, मनुख दे विचारां विच काम है, मनुख दे विचारां विच लोभ है, मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया, क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हों की अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हों तिना की छाया है। क्रोध ते मोह की अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इसकी अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हों तिना की छाया है। काम की छाया है मोह, लोभ की छाया है मोह, हंकार की छाया है मोह। हंकार की छाया है क्रोध, मोह की छाया है क्रोध, काम की छाया है क्रोध। जिस तो लोभ की पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा, गुस्सा आउंदा। जिहड़ा काम की पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है, प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा रोग खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिहड़ा अहंकार नूं पट्ठे पा दे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। जिहड़ा कह देवे तुहाडे जैसा कोई दानी नहीं, तुहाडे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, तुसी ना हो ते सेवा हो नहीं सकदी, तुसी ना हो ते गुरुद्वारे चल नहीं सकदे। कुछ ते अहंकारी ऐसे हुंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करदे ने। कहिंदे ने ज्ञानी जी असीं ना होईए ते जलूस किवें निकलेगा, असीं ना होईए ते स्कूल दे दरवाजे बंद हो जाण, असीं ना होईए ते गुरुद्वारे दा काम चल ही नहीं सकदा। मेरा इक्को ही जवाब हुंदा, तूं मर के वेख सब कुछ आउंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा, मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलणगे, मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलणगियां। पर इसनू कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा अहंकार, फिजूल अहंकार, फोका अहंकार। तो जिहड़ा अहंकार नू पट्ठे पा दे उसते मोह आउंदा है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है, चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा। जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई बुनियाद नहीं है, अपनी कोई होंद नहीं है, ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझणा है, थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है, यह भी मैं अर्ज कर दें। और अंतरमुखी होए बिना कोई समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है, ते सुनना ही ते कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने, मंदिर ने, गुरुद्वारे ने, साधना दा थोड़ा थोड़ा अंतर है, मंजिल इक्को ही है, ठिकाणा इक्को है। साडे हिंदू वीर जांदे ने मंदिरां दे दर्शन करन लई किसी देवते अवतार की मूर्ति दे। सारी साधना अखां ते खड़ीए, वेखण ते खड़ीए, दर्शन ते खड़ीए, दर्शन करने ने, वेखना है। अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां। सारी साधना दर्शना ते खड़ीए। अज एक मंदिर दी कोठड़ी विच भगवान नूं वेखीए, फिर बाहर वेखीए, फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे। साधना है, वेखना है, दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद दे पढ़न लई नमाज। सारी साधना पढ़न ते खड़ी है, कुरान की तलावत करनी है, नमाज पढ़नी है।

मित्रंत अयंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीरने आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम।

0: वेदन पर ब्रह्म परमेश्वर आराधनान के हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने फिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर जौनी पाए। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक्त चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोवन जवानी स्वपन दे आधार से खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभ ताक मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल होया फिरदा है। इसे विच्ची अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है, दूसरे नूं कुछ समझदा है। आपस को दी रग कर माने औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मणा मैं देखे दोजक जात। हर एक नूं छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नूं महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुद रा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नूं आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनु एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान भी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कहो कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी। कह रविदास सभे नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। इत सारे भूल के पागल हुए फिर देने, कौन हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ना नासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होता है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होता है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदिया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। एक गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना बेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन, इक ना सुरत ना सिद्ध, अकल सिर अखर का भयो ना लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार के गुणा ते ही खड़ा होंगे, और अहंकारी दिया अखा, अहंकारी का मस्तक, अहंकारी की चाल स्पष्ट रूप में अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते हैं, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा। अहंकारी चाहता है सारिया दगाह मेरे ते आ सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मूंदे दुर्गंध ही के बेडे। तू है कि हड्डिया हड्डिया देते चढ़े होया मांस मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी और किया तू हड्डिया का मान जोबन जवानी का मान हड्डिया का मान मांस का मान मिंज का मान और खलड़ी का मान इस तो अलावा और है कि एक आया ते इतनी नापाक है कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर देने करपूर बहुत सुगंधा परस मानक देहं मलीनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया फुल्ला जैसिया पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदे आ स्पर्श करदे आ मैलियां हो जांदियां ने मजा रुदर दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है जो बंदा अहंकार करता है फिर धन का अहंकार धनवंता होए क्या को गर्वे जहां सब किस तिसका दिया दरवे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने धन कितने उस दे वसाहल नाली सब कुछ प्राप्त होता है और सब तो वड्डा वसीला है ए तन और तन उसकी देन है ये दिमाग उसकी देन है और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन कट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है वसीला ते परमात्मा है पर धन का अहंकार सता प्रभुता इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा का सिंघासन चाहिए। दान का अहंकार ज्ञान का अहंकार सेवा का अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई है बनाई जाता है बनाई जाता है बनाई जाता है और गुणा के आसरे से बैठ के कोई प्रसन्न बड़ा होता है क्योंकि जगत तो जस मिलता है जगत तो माण मिलता है वो माण इसके अहंकार नू होर वधांदा है होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया फिर धन का त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया हूँ त्याग का अहंकार। सता कोल है सता का अहंकार सता का त्याग कर देता है हूँ त्याग का अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है पहले जो कोल है उसका अहंकार फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है उस त्याग का अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है और अहंकार तो बचना औखा। जीरा सिंघासन भी असी निरंकार बिठाने लिए बनाने अहंकार बैठ जाता है। दान का सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी भगवान आके बैठे निरंकार आके बैठे हंकार आके बैठ जाता। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नो दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने, अहंकारी अपने आप नू महान समझदा है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचदा है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाक कृष्ण ने, मैं परमात्मा कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा कौन होंदा खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नू भी मनन नू तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहों का मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक की निगाह मेरे से टिक है और हर एक का मान मैं हो जावा, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दी है। इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तों है तों है तू है तू है। अहंकार की यात्रा आरंभ होती है मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, एक जन्म मरण को मिटा के प्रभु का रूप बना देती है, बूंद सागर में लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब

है, तू है, तू है। इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हां, मैं हां, मैं हां, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है।

अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत किस कारण हो रही है मैं पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू हासिल है तू ही है उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं बस तू ही एक आलम का कहना है अज रहा चोनार कि सलामत न कुनद इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके इतना आकर के ना चल बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना हो गए दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दर पेश ना खुआनद और इमामद न कुनद कि किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके निमाज पढ़ी किधरे अगे होके नहीं ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़ने मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा अक्सर धार्मिक मंदिरां दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने कि प्रधान ते परमात्मा है या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभमान जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया है मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनता है पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है खाना मिले पर अहंकारी ते सिर ते बैठन की कोशिश करता है अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों दे सिर दे उत्ते ही होंदे सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठता है कई दफा सिर हिल जाने ने ते थले गिरदा है इस वास्ते कहंदे ना गरूर का सर नीचा आखिर जो लोगों दे सिर झुकाना चाहता है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है सारी धार्मिक साधना इस दीवार नु तोड़न वास्ते है पर अहंकार बड़ा चलाक है धार्मिक साधना नो भी अपना सिंघासन बना देंदा है बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है

ते ज्यों कुंचर इसनान। सारी धार्मिक साधना हाथी दा इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण दा कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, नितरं तजन्त सतरं दृढ़ंत

अरारद निहाले दुश्मनी बरकुन किरंजो बेशुमार आरद। दोस्ती दा बूटाला मिलाप दा बूटाला जितों खुदा दा मिलाप चाहना है जी किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है इसनों आज ही जड़ों पुट दे सिवाय दुखां दे सूल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको मीत हम आपन की ना हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया पशु पक्षियां तक नु जड़ चेतन सबनु अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है दुनिया बड़ी वड्डी है सारिया नु मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल। गुरबाणी धन दसती है एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब बात। जब उस एक नूं सज्जन बना लैंदा ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नूं भी मित्र बना लिया है दुष्टां नूं भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत हम आपन की ना। पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नु मारन वास्ते है और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है बहुत जपीश्वर है बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया दर्शन कर राजा प्रसन्न होया। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है। असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर वो राजा कहन लगा आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपके दर्शन करा ये नजराना है ये भेट है चलो नहीं पाना आप रख लो दे देना किसी नूं। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र बूढ़ा मित्र बचपन का दोस्त और वो भी साधु से वो भी तपस्या कर रहा से मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल संत की
कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया है। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करने बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई तीन घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहिंदा है भी इत्थे कल्लियां बैठे हां, तुसीं तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो, मैं तीन घरां विच जाना है, तुसीं मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे के चले हां तुसीं पा लो। वो साधु कुछ बेनियास ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है रमजी मनुख हरक सोग तो उच्चा मनुख पहन लिया उसने वो चोला कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते ने सारियां दी निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी सारियां दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गई ने, अज ते मेरे मित्र ते चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है इतने मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने, खैर जिस घर विच जाना सी गए। आओ भगत होई सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो ये जो नाल आए ने ये कौन ने, क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने, सोना चोला पहने हुआ है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस विस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने पुछदे ने संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने। दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपेश्वर ने कपीश्वर ने, पर जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए उस मेहमान साधु ने कहा मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा है। खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया है तुसी बुरा ना मनाओ बुरा ना मनाओ,
दूसरे घर गए। दूसरे घर वाले भी निगाह इस साधु पे अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे की शांति है। और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछे, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस देची वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनु इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत हुई बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे हैं, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ ले, संत जी ये नाम कौन आए ने, ये केड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करने। ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया है, तीन दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा, विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पीछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरे आरी। ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने हंकारी, गुरु को भी छुपाते हैं, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर कित्थे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने अगर गुणवान है, मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी होंदी है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटण दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन होंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता। अहंकार जींदा है मैं आश्रित, तू तो बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरी के बोल नु अगे करके, कि बकरी का बोल है मैं मैं मैं,
ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਖਰ ਬਕਰੇ ਨੇ ਕੀਆ,

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वट दिता।
0: गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा